और खामोशी खुद एक इजहार बन जाती है। तो अगले कुछ सेकंड मैं कुछ नहीं बोलूँगा और आप अपने दिल पे हाथ रखिए और सिर्फ उसी की आवाज़ सुनिए। इश्क की खामोशी भी इकरार बन जाती है अगर दिल साफ हो। कभी सोचा है प्यार कब सच्चा लगता है? जब वो आसान नहीं होता फिर भी छोड़ा नहीं जाता। प्यार सिर्फ खूबसूरत दिनों के लिए नहीं है, प्यार उन रातों के लिए भी है जो आंसुओं में बीतती हैं। फिर भी आप उसी शख्स को याद करते हैं। सच्चा प्यार हमेशा एक रात का फासला सह लेता है। अच्छा, एक आखिरी कहानी, एक अधूरा इकरार। वो दोनों हर रोज एक ही बस स्टॉप पे मिलते थे। नजरें नहीं मिलती थी, दिल धड़कता था पर बोलता कोई नहीं था। एक दिन लड़के ने सोचा कि आज तो कह ही दूंगा, लेकिन वो लड़की उस दिन आई ही नहीं। जिंदगी आगे बढ़ गई,

पर एक इकरार दिल में वहीं का वहीं अटका रह गया। कई साल बाद उसे समझ आया कि प्यार हमेशा मिलना नहीं होता, प्यार कभी कभी दिल में बसा रह जाना भी होता है।

प्यार की यादें वो भले ही चाहे पुरानी हो पर दिल में हमेशा नई लगती हैं। अच्छा बात बताएं कि आपकी सबसे खूबसूरत रोमांटिक याद कौन सी है? पहली डेट, पहली हंसी, या वो पहला मिस यू जो आपने छुपकर पढ़ा था? प्यार में छोटी छोटी चीजें सबसे बड़ी बन जाती हैं। कुछ पल ऐसे होते हैं कि जिनमें उम्र गुजर जाती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर बस दिल एक ही बात कहता है, यही है वो। प्यार आवाज नहीं करता, वो बस महसूस होता है, एक सांस की तरह, एक धड़कन की तरह और एक रात की तरह। तो मेरी जान, अगर आपके भी दिल में कोई है तो उसका नाम एक बार धीरे से मन में बोलिए और देखिए, दिल खुद मुस्कुरा उठेगा।

उम्मीद है कि आपने प्यार को थोड़ा सा महसूस किया होगा। याद रखिए, प्यार हमेशा बड़ी चीज नहीं होता, कभी कभी ये बस छोटी सी मुस्कान, एक संदेश या किसी का नाम मन में आते ही जिंदा रहना। और हाँ, मैं हूं आपका मुसाफिर दोस्त जिमी। फिर मिलेंगे अगली रात, अगले हफ्ते इसी फ्रीक्वेंसी पे और मोहब्बत की इन्हीं धड़कनों के साथ। मैं लेता हूं आपसे इजाजत, और हाँ, किसी को बताने का मौका मिले ना तो ये जरूर कहिएगा कि मैं तुम्हें चाहता हूं।